0: समस्तीपुर हो तो मैं आना तो पहले कसूर सारे पर दान के चाचे कलूर दान
1: सफाई आइले सुंदर नूंचा रेडियो साइन 89.8 मेगाहर्ट्ज
2: साहिनो समय सूचक अहिले दिउँसोको एक बज्यो इट्स 1 पीएम।